सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात ना जी को, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और

आगे फला इन्हीं को दियो जग में जस और दियो सल्पी को मोग्रह में मनते।

0: जो तुझ भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख
0: असंख
1: तपताओ,
0: ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास।
1: असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार,
0: असंख सूर मोह पख सार।

0: सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनुप्य रूपे समस्त निवासी
1: सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्धर धंग गंग ओग हर्ता
0: परम परम परमेश्वर पोषपालं सदा सदा सिद्धाता दयालं
1: नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद
0: जले हैं थले हैं अभीत हैं अभे हैं
1: प्रभु हैं अजू हैं देश हैं अपेश हैं पुचंग पयात छंद
0: आगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने
1: नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे
0: नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्व

0: देवनाद मूरत थाप्यो सभे जय थाप
1: परम रूपनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार
0: सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गण पंजन हार
1: कालहीन कला संयुत काल पुरख देश
0: परम रहत पूते अलख पेश
1: अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम
0: गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
1: आप रूप अमेक अनुस्त एक पुरख अवधूत
0: गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
1: अंगी न पंग नाथ में एक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व

0: तहै सुनित हैं अजात हैं आजाद हैं सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: सावल शांतव प्रसाद
0: नमो नरकनाशेष दैवं प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अभंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: अनंगी ना मैं द्रभंगी दृगा मैं द्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
1: ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै
0: नरसाकं श्री कै मितो मई कैस दैवं प्रभा है अजय है अजा है
1: भगवती शांतव प्रसाद
0: के जहर जहूर है के हाजर हजूर है में सलसला में समस्तल कलाम है
1: के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है
0: के रोजी दहंद है के राज करहिंद है करी मुल्क माल है कुसनल जमाल है
1: करी मुल्क राज है गरी बल निवास है हरी फल शिकन है हिरासल फिकन है
0: लंकंग पनास है समस्तल निवास है गंजल गनी में रजाय करहीम है
1: समस्तल जुबान है के साहिब किरा है के नरकंग पनास है
0: सर भगवान है मैं सलवान है तमाम मुल तमीज है समस्तल अजीज
1: है परमीश है समस्तल अदीस है देशोल लेख है मैं सोल पेख है
0: जमीनुल जुमा है मी कुल मा है करी मुल कमाल है जुरत जुमाल
1: है अजलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो बबूत है
0: के मितो पसा है के आतम प्रभा है के चलंग नांग है के मितो अपंग है
1: पार शंत व प्रसाद

0: धर्म अर्थित कर्म अनबन अनंत दाता महंत हर मूल मना संत व प्रसाद
1: करुणालय है हर काले है कल खंडन है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है
1: जग के धरण है जग के करण है मन माने है जग जानी है
0: सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है
1: करुणा कर है बेसंबर है सुर बेसुर है जगतेश्वर है
0: ग्रह मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणा कर है
1: अजपा जप है थपा थप है कृता कृता अमृत अमृत है
0: अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी धृत है
1: अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता अमृत अमृत है
0: अजपा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है कल कायक है
1: बेसंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है
0: अपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है
1: अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है अर्ता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुचंग पयात चंद
1: नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो

0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूज नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग बभूते
0: लंकार रूपे लंकार लंके नमो आसास नमो बांक बंके
1: भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरभंगी तिरकाले अनंगी अकामे एक श्री चंद
0: अजय अलह अपह अभ
1: अजू अनास अकाश
0: अगंज

0: नमस्तुल परनामे सो मस्तुल परनासे अगंजलनामे सो मस्तुल निवासे
1: कामंग बैपुते सो मस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सो धर्मंग बैपुते
0: सदा सचिदानंद सतरंग परनासी कलिम।

साहिब जी, तुम समर्था कारण करण ढाकण ढाक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरण चरण ढाकण ढाक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी चरण शरण सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ।

बल बल साध जना कोमल संगत पारे उतरे आ रहाओ। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पग परे आ, धन धन साध जिन हर प्रभ जाने आ, मिल साधु पतत उधरे आ। मनुआ चलै चलै बहो बहो बिद, मिल साधु वसगत करे आ, ज्यों जल तंत बसारे बदक ग्रसमीना वसगत करे आ। हर के संत संत पलनी के, मिल संत जना मलहिया, हों मैं दुरत गया सब नीकर, जो साबन का पुर करे आ। मस्तक लिलाट लिखिया तुर ठाकुर, गुर सतगुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया, जन नानक नाम उधरिया। कंदड़ा माला चमथा मेरा मन, संत जना पगरीन, हर हर कथा सुनी मिल संगत, मन कोरा हर रंग भेन रहाओ। हम चित अचेत न जाने, गत मित गुर की ये सुचित चतेन, प्रवीण दयाल की ओ अंगी किरत, मन हर हर नाम जपेन। हर के संत मिले मन प्रीतम, कट देवो ही अरातेन, हर के संत मिले हर मिलया, हम किए पतत पवेन।

ज्यों कास्ट संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संगत रे साध साध संगति गुर सतगुर गुर साधो चार बन चार आश्रम है कोई मिलै गुरु गुरु नानक सो आप तरै कुल सगल तरा दो कानड़ा महला चौथा जप हर जस गावो भगवान जस गावत पावलहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो कृपान रहाओ तेरे जन तिहावै इक मन इक चित ते साधु।

लगावे गो, कर कृपा सतगुरु मिलावो, मिल संग सतगुरु नाम थे आवे गो। जन्म जन्म के हो, जन्म जन्म की होमे मल लागी, मिल संगत मल ले जावे गो। जो लोहा तरियो संगला कास्ते लाग, सब गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर सलावे गो। बिन संगत कर्म करे माने, कड़ पानी ची कड़ पावे गो। भगत जन के हर कुवार, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वड़ियाई, सतगुरु शब्द समावे गो। भगत जन को सदा निवरहिए, जिन निवेत हर जन निवेत हर गुरु, हर पता फल पावे गो। जो निंदा दुष्ट करे को एकता की, हर नाक जो पद जावे गो। ब्रह्म कमल पूते

0: संरचना
1: प्रभु को सिमरे से तनवंते
0: प्रभु को सिमरे से पतवंते
1: प्रभु को सिमरे से जन परवान
0: प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरे से बेमुताजे
0: प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे
1: प्रभु को सिमरे से सुखवासी
0: प्रभु को सिमरे सदा विनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
0: नानक जन की मंगेर वाला
1: प्रभु को सिमरे से परोपकारी
0: प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे
0: प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे
1: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभु को सिमरे तिन निर्मरीता
1: प्रभु को सिमरे तिन अंध कनेरे
0: प्रभु को सिमरे बसे हार नेरे
1: संत कृपा ते अंधिन जाग
0: नानक सिमरन पूरे भाग
1: प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे
0: प्रभु के सिमरन कबू न चूरे
1: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी
0: प्रभु के सिमरन सह समानी
1: प्रभु के सिमरन निहचल आसन
0: प्रभु के सिमरन कमल विगासन
1: प्रभु के सिमरन अनह चुनकार
0: सुख प्रभ सिमरन का अंतन पार
1: सिमरे से जन जिनको प्रभ मया
0: नान तेन जन सानी पया
1: हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए
0: हर सिमरन लव वेदो पाए
1: हर सिमरन पै सिद जति दाते
0: हर सिमरन नीच गुण जाते
1: हर सिमरन तारी सब धरना
0: सिमर सिमह कारण करना
1: हर सिमरन कियो सगल अकारा
0: हर सिमह आप निरंकारा
1: कर कृपा जिस आप बजाया
0: नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ सरन तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सत मीत ना पाई
0: नाम तेरे संग सहाई
1: जह महा भयान दूत जम दलै
0: केवल नाम संग तेरे चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी
0: हर को नाम खिन माहे उधारी
1: अनक पुनः चरण करत नहीं तरे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपहु मन मेरे
0: नानक पावो सुख नेरे
1: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
2: नाम जपहु
1: लाख करोड़ी बंधन पर है
0: का नाम जपत निस्तर है
1: अनक माया रंग दिखना बजावे
0: का नाम जपता कावे
1: जेह मार्ग हो जात अकेला
0: नाम संग हो सहेला
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइया
0: गुरुमुख पर अंगद पाइए
1: छूट नहीं कोट लख बाही
0: नाम जात पार पराही
1: अनक विघन जाय आए सिंगार है
0: हर का नाम तुत काल उतार है
1: अनक जोन जन्मे मर जाम
0: नाम जपत कावे विश्राम
1: हो मैं लामल कभू न तो वै
0: का नाम कोट पाप को वै
1: ऐसा नाम जपहु मन रंग
0: नानक पाइए साध के संग
1: जे मार के गने जाए न कोसा
0: का नाम हुआ संग तोसा
1: जे पै डैमा अंध गवारा
0: का नाम समुझियारा
1: जहां पंत रखो ना सियानु
0: का नाम ते नाल पहचानु
1: जय महा भयान तप्त बहु काम
0: हर के नाम की तुम ऊपर शाम
1: जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ख है
0: नानक हर हर
1: भक्त जना की बर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: हर जस करत संत दिन रात
0: हर साध कमात
1: हर जन कह हर नाम निदान
0: हर नाम जन की नो दान
1: मन तन रंग रत्ते रंग एक है
0: नानक जन के विद विवेक
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
0: हर के नाम जन को तृप्त भूत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत का करण
1: हर का नाम जन की वड्याई
0: हर के नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: नाम जप कृष्णाए वियोग
1: जन राता हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना
0: हर का जन को आप प्रभु दीना
1: हर हर जन के ओट स्तानी
0: हर प्रताप जन हर न जानी
1: ओत पोजन हर अस राते
0: सुन समाद नाम रस माते
1: आठ पैर जन हर हर जपे
0: हर का पद करण नहीं छपे
1: हर की भक्त मुक्त वो करे
0: नानक जनसा केते तरे
1: पार जाते हो हर को नाम
0: काम तेरा हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा
0: नाम संत दा दुख लथा
1: नाम की महिमा संत रिद वसै
0: संत प्रताप गुरु समनसै
1: संत का संग बड़ भागी पाई है
0: संत की सेवा नाम ते आई है
1: नाम तुल कछ अवर ना होए

0: अगन महे होमत परान न्योली कर्म करे बहु आसन निमख निमख कर सीर कटावे के नाम सम सरकश नाहे
1: गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ दे छुटे
1: सोच
0: करे दिन सर रात
1: इस
0: देही को बहु साधना करे जल तो वे बहुत देव नीत मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पतत बहुच
0: बहुत स्यानप जम का भाव व्यापे
1: नानक जतन तृष्णा तापे
0: भेख अनेक अगर नहीं बुझे
1: ओट पाग अज्ञा नहीं सिजे
0: छूट नाही ऊ पयाल
1: बहुत व्यापे माया जाल
0: अबर कर तू सगली जम डाने
1: गोविंद भज में तेने माने
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले
0: चार पदार्थ जेको मंगे
1: साधना की सेवा लागे
0: जेको अपना दुख मिटावे
1: नाम हृदय सदगावे
0: जेको अपनी शोभा लोरे
1: संगे होमे छोरे
0: जेको जन्म मरण ते डरे
1: साधना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सा जाका मिटे मान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सुगने सबते ऊंचा
0: जाका मन होए सगल की रीना मन अपने ते बुरा मिटाना
1: सगल से सारना
0: सुख दुख जन समद स्थिता
1: पाप ने
0: निर्तन को तन तेरो नाओ
1: निधावे को ना तेरा थाओ
0: निमाने को प्रभ तेरो मान
1: सगल कटा को देवो दान
0: कर्ण करावन हार स्वामी
1: सगल कटा के अंतर जामी
0: अपनी गतमित जहनो आपे
1: अपन संगा प्रभ राते
0: तुमरी उस्तत तुम ते होए
1: नानक अवन जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: अर्को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सगल उदम में उदम पला
1: अर्का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी में अमृत वाणी
1: अर्को जसन सन्मानी।

0: सुन मीता नानक बिन बंता
1: सार जना की अचरज कथा सुनि
0: साध कै संग मुख उजल होत
1: साम सगली खोत
0: साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध कै संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा वरने कौन प्राणी
1: साध की शोभा ब्रह्म है समानी
0: साध कै संग गोचर मिलै
1: साध कै संग सदा पर फुलै
0: साध कै संग आवे बस पंचा
1: संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर वैन
0: साध के संग ना कतहु तावे
1: साध संग स्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते भिन्न
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु कैसे महामीत
0: साध संग किस्यो नी बैर
1: साध के संग ना बिगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नाही हो ताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: पे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभुवन आई
0: साध के संग ना कबहु तावे
1: साध के संग सदा सुपावे
0: साध संग वस्त्र गोचर लह
1: साधु के संग अजर सह
0: साध के संग बसै थान ऊंचे
1: साधु कैसा महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़े सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उधार साधु कै संग सो धन पावे
1: सबको बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु कै संग पाप लायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सबल जनम
0: साध के संग नहीं कछ काल
1: दर्शन भेट तो तने हाल
0: साध के संग कलुखत हरे
1: साध के संग नरक मर हरे
0: साध के संग ईहा उहा सोहेला
1: साध संग विचरता मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग ना बैठा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै
1: नानक उदरे साध सुन रसै
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग ना मन ते विसरै
1: साध संग सर्प निसरै
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग कटगा डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी
1: साध संगत पै
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध भेटे संजोग
0: साध की महिमा वेद ना जाने
1: जेता सुने तेता बख्याने
0: साध की उपमा त्यो गुणते दूर
1: साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
1: साध की शोभा मूंचते ऊंची
0: साध की शोभा साध बने आई
1: नानक साध प्रभु भेद ना पाई श्लोक
0: मन सच्चा मुख सच्चा सोए
1: एक बिन कोए
0: नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जन्म कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सुर सर्प को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी का

0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे महल लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास
1: जैसे तल ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतुर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही उमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन भय
1: नानक दिन प्रभाव करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समर्थवासी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल ज्योता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी ने ताकत बंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल भला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी अमर जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा आनंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास।

0: ब्रह्म ज्ञानी इस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।

0: आपस को कर्म बंत कहावे धन भूमका जो करे गुमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे धनवंता होए कर गरबावे बोल अस्कर मानुख ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत किसे ना बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तारे अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे आपस को जो भला कहावे सर्व की रेन जाका मन होए जब लग जाने मुझते कश होए जबे जाने मैं किस करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए तब कृपा ते बंधन टूटे सैस खट्टे लख को उठता वै
1: माया पाछे
0: अंक भोग बिख्या के करे बिना संतोख नहीं को राज्य नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावन आपे आप कर्ण करावन करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप रस होए
0: जो किश किन्नो सो अपने रंग

0: समाए
1: आप उदेसै समझै आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सबका शुष्काव करने हार
1: उसते भिन्न कहो किश होए
0: अंतर एक सोए
1: अपने चलताप करने हार
0: करे रंग पार
1: मन में आमन अपने माहे
0: नान कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभ स्वामी
0: गुरु प्रसाद के ने बखयानी
1: सच सच सच सब कीना
0: कोट मदे के ने बेले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: सुंदर पारन रूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटका सुनी सर्वन बखयानी
1: पवित्र पवित्र

0: दुखन हार जा घटे
1: संत के दुखन जंत नहीं छुटे
0: संत का दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत का दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन शोभा ते हीन
0: संत के हते को रखे न कोए
1: संत के दुख हान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक सत्संग निंदक पी तरे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
0: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिक जोन किरमाए
0: संतन का दुखन तृष्णा में जले
1: संत के दुखन सब को शले
0: संत का दुखन तेज सब जाए
1: संत के दुखन नीच नीच आए
0: संत दुखी का थाव को नाहे
1: नानक संत पावे ता होए पीगत पाहे
0: संत का निंदक महा अतताई
1: संत का निंदक टिकर ना पाई
0: संत का निंदक महा त्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज ते हीन
1: संत का निंदक दुखिया अरलीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा बिजोग
0: संत की निंदा दोख में दोह
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा अपवित
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लागे
1: संत के दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकारी
0: संत का दुखी जन में मरे
1: संत की दुख ना सुख ने डरे
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ
1: नानक संत पावे ता ले मिलाए
0: संत का दुखी आद बीते टूटे
1: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
0: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सांस बिना मृतकी लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किस ना है
1: अपन बीज आपे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर न राखन हार
1: नानक संत पावे ता ले उबार
0: संत का दुखी यो बिल लाए
1: जो जल बिहून मछली तड़ फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
1: जो पावक इंद्र नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटा केला
1: जो बहार तिल खेत माहे दोहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
0: तीर्थ निंद का तुरी पया
1: नानक जो जिस पावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाई है
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है
0: संत के दुखी की पूजा ना आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत का दुख ना तृष्टा कोई
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पया कितना मिटा कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसके हो करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: सब की उस्तत करो दिन रात
1: इसे त्याबो सास गिरास
0: सब कछ वर्ता तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेल आप करने हार
1: दूसर कौन कहे विचार
0: विष्णु कृपा करे तिस आपन नाम दे।

0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगल में आप
0: अनक जगतराई थाप थाप
1: नासी नाही किछ खंड
0: तारन तार हो ब्रह्मांड
1: लख पेव पुरख प्रताप
0: आप जपाए तनानक जाप
1: जिन प्रभदाता सो प्रभ सो सो बावंत
0: सगल संसार उदरे तिन मंत
1: के सेवक सगल उदारन
0: प्रभ के सेवक दुख विसारन
1: आपे मेल ले कृपाल
0: गुर का समझा पय निहाल
1: उनकी सेवा सोई लाग
0: जिसनो कृपा करे बड़ भागै
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो विच करै सो प्रभ कै रंग
0: सदा सदा बसै हर संग
1: सवाए होवे सो होए
0: करणे हार पछाणै सोए
1: तब का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिस ते उपजे तिस महे समाए
0: ओए सुख निदान उन्हों बने आए
1: आपस को आप

0: हृदय में तोल,
1: बाद के संथ संचाल,
0: अबर त्याग भिख्या जंजाल,
1: तन तन कह सब कोए,
0: मुख उजला दरगह सोए,
1: यो व्यापार बिरला व्यापार,
0: नानक ताके सद बलिहार,
1: चरण साध के तोय तोय पियो,
0: अल्प साध को अपना जियो,
1: साध की तूर करो स्नान,
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान,
1: साध सेवा बड भागी पाइय,
0: साध संघार कीर्तन गाइय,
1: अनेक विघनते साधु राख,
0: अर्गुण गाय अमृत चख,
1: कोट गही संत दराया,
0: सर्व सुख नानक ते पाया।

0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसके सिठ सो करण हार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योत पावे सो वतिया
0: बिस्मन बिस्म पे बिस्माद
1: जिन बुझिया तिस आय सवाद
0: रब के रंग राजन रहे
1: गुरु के वचन पदार्थ रहे
0: ओए दाते दुख काटन हार
1: जाके संग तरे संसार
0: जन का सेवक सो वड भागी
1: जन के संग एक लिबला

0: चरण सत सत परसनहार,
1: पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पेखनहार,
1: नाम सत सत ध्यानहार,
0: आप सत सत सब धारी,
1: आपे गुणकारी,
0: शब्द सत सत ब्रह्म भगता,
1: सुरत सत सजा सुंदा,
0: बुझन हार को सत सब होए,
1: नानक सत सत प्रभ सोए,
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या,
1: काल करावन तन मूल पिछानिया,
0: जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया,
1: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया।

0: हृदय हर नाओ
1: मन कबार गुर को बल जाओ
0: सर्व निदान जी का दाता
1: आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता
0: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
1: एक है आप नहीं कश पर
0: सियान लया न जाइए
1: नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है
0: सफल दर्शन भगत पुनीत
1: निर्मल
0: रीत संग राम गुण रवे
1: पार ब्रह्म की दरगह गवे
0: सुनकर वचन कर न गाने
1: मन संतोख पातम पतियाने
0: पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र
1: अमृत दृष्ट पेख है हुए संत
0: गुण व्यंत कीमत नहीं।

0: परम गमन
1: सो नानक हर हर जस रवन
0: निर्गुण आप सरगुण पियो ही
1: कला तार जिन सगली मोही
0: अपने चरित प्रभाव बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिंदु जा नाही कोए
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: ओत पोत रव्या रूप रंग
1: पै प्रगा साध कै संग।

0: संत जनाम मिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: अब पाप सामीत विसार हो,
1: चरण कमल रिद मैं वरतार हो,
0: कर्ण कारण सो प्रभु समर्थ,
1: दृढ़ कारण कहो नाम हर बात,
0: संचो हो वो भगवंत।

0: दीन दयाल
1: भगत बचन सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा कात प्रतपाल
0: आद पुर कारण करतार
1: भगत जनांगे प्राण दार
0: जो जो जपै सो होए पुनीत
1: भगत पाए लावे मन हीत
0: तम निर्गुण यार नीच जान
1: नानक तुमरी सन पर भगवान
0: वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमख हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़ियाई
1: हर के नाम की कथा मन पाई
0: भोजन कापर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: सो करनी शोभा तन मंत
1: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत्र।

0: कहते होता
1: तारी आपन सुन समाद
0: वैभ लोक संग कमात
1: इसका वर्ण चिन्ह न जावत
0: तब नरक शोक को किसे व्यापत
1: तब आपन आप पार ब्रह्म
0: तब मोह का किस होवत परम
1: आपन खेल आप वर्ती जा
0: नानक करने हारना दूजा
1: तब होवत प्राप केवल तनी
0: तब बंद मुक्त को किस को बनी
1: तब एखे आर अगम पार
0: तब नरक शोक को कौन अवतार
1: तब निर्गुण प्राप सह सुभाए
0: तब से सकत कहो के ठाए
1: तब आपे आप अपनी ज्योतर
0: तब कवन डर कवन कद डर
1: आपन चलित आप कर्ण हार
0: नानक ठाकुर अगम पार
1: नासी सुख अपन आसन
0: जन्म मन को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्राप सोए
0: तब जम की त्रास को किस होए
1: जब अवगत अगोचर पावे का
0: तब चित्र गुप्त किस पुष्ट लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
1: अपन आप आपिय चर्जा
0: नानक अपन रूप आप ही उपजा
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता
0: जय मैल को क्या होता
1: जय निरंजन का निर्वाण
0: जय कौन को मान कौन अभिमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय शाल सिद्ध लक्त कहो कीस
1: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: जय किसे भूख अवन तृप्तावे
1: तन करावन कर नहार
0: नानक करते का नाहे समार
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: कपन माए बाप मित्र सत भाई
1: जय सर्व कला आपे परवीन
0: वेद देव का को चीन
1: अब जब अपन आप उतार
0: सगन अब सगन कहा विचार
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा
0: कौन ठाकुर कौन कही है चेरा
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद
0: नानक अपनी गत जानू आप
1: जय अचल अछेद अभेद समाया
0: किसे व्यापत माया
1: आपस को आपे आदेश
0: उनका नाही प्रवेश
1: जय एक है एक एक भगवंता
0: कौन है चिंत किस लागे चिंता
1: जय अपन आप पतियारा
0: कौन कथे कौन सुनने हारा
1: व्यंत ऊंचते ऊंचा
0: नानक आपस को आपे पहुंचा
1: आप रच प्रपंच कार
0: गुण में किन्नो विस्तार
1: पाप उनता पई कहावत
0: ओ नरको सर वंशावत
1: छल छेद पेद समाया
0: वहाँ किसे भी आप आल जाल माया जंजाल परम पै
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनक प्रकार की ओबख्यान
1: अपन खेल आप कर देख
0: खेल संकोचे तो नानक एक
1: अवगत भगत है आप
0: जय पसरे पासार संत प्रताप
1: पाखा आपे तनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आपे कौत कर अनचोज
0: आपे रस भोगन निर्जोग
1: पावे ते सापन नाय लावे।

0: उधार
1: अमृत वचन हार के गुण गाओ
0: प्राण तन का यह सुहाओ
1: आठ पहर पापे खो नेरा
0: मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय बसाओ
0: मन इच्छे नानक फल पावो
1: फल सफल दल्यो सवार
0: राम नाम अंतर उतार
1: पूरे गुर की पूरी दिख्या
0: जिस मन बसे तिस साज प्रीख्या
1: तन नाम जपो लिव लाए
0: दुख दर्द मनते पहुँ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: दरगह निभे खेप तुम्हारी
1: एका टेक रखो मन माहे
0: नानक बहर न आवे जाहे
1: किस्ते दूर का को जाए
0: उबरे राखन हाथ त्याए
1: निरपो जपै सगल पौ मिटै
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस पर राखै तिस नाही दुख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटै अहंकार
0: जिस जन को कोई न पहुँचन हार
1: रूपर ठाडा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्य पूरा
1: मत पूरी अमृत जाके दिष्ट
0: दर्शन पेखद उदरत श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर रूप
1: धन सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पर प्रदान
1: जिस मन बस होत निहाल
0: निकट न आवत काल
1: अमर भय अमरा पद पाया
0: साध संग नानक हर।

0: संत संग अंतर पव डीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: चल समिग्री एकस कट माहे
1: अन करंग नाना दिष्टाहे
0: नौने दे अमृत प्राप का नाम
1: देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहत नाद
1: कह न जाये चंद विस्माद
0: देखा जिस आव दिखाए
1: नानक दिजन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंतर
1: कट कट व्याप रहा भगवंत
0: तन माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूर्ण पद पाल
0: दिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी में संतर माहे
1: चार गुण तल से समाहे
0: किते पिन नहीं को ठाओ
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमृत में देख
1: ससिया सूर्य खेतर में

0: तिस किए रहत
1: सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मान
1: कारण करावन हार प्रभ जान
0: अंतर बसे बार पियो ही
1: मानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत सत किया सब सत
1: इस प्रभ दे सगली उत्पात।

0: सुनोपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरो गोविंद
1: मन अंतर की उतर चिंद
0: आस अनित त्यागो तरंग
1: साजना की धूर मन मांग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: सा संग अगन सागर तरहो
0: हाथन के पाल्यो पंडार।

0: दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का हे आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमोलिक लाल हे रतन
0: सुनत कमावत हो।

0: शांत रिद्ध नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: मद सगलते।

0: कर कर के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत
1: चीटी ते कुंतर सतुला सप के पादृश कर फूला।

नित त्याये हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरण भया तह उपात कत किन्ने वड़ भागी।

है ए गुरु की मोहर सुहावन, पहले जब सृष्टि उपाई तब ही मानुख देह बनाई, तन इसके सिर केस जो दिनो सो एह तन श्रृंगार है कीनो, दाड़ा मूछ सिर केस बना।

त्रिग तिस जन्म जो धर्म विसारै प्रातः काल सत्संग ना जावै तनखा दार वै वड्डा कहावै प्रातः काल सत्संग ना

सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जब पूरन होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब श्रेष्ठ।

सब सुहागन माण लिया एक देवरा मैं अवगण भरपूर शरीरे हम क्यों कर मिला।

0: यार वे प्रिय अगर सखिया मुँह कही ना दे गया
1: यार वे एक डू एक चाड़ हाँ किस चेते ही यार
0: एक डू एक चाड़।